आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय।

0: चिकित्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
1: रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। उसके पिता किसान थे और घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। रवि हमेशा सपना देखता कि वो कुछ बड़ा करेगा, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कैसे। एक दिन गांव में एक शिक्षक आए और उन्होंने बच्चों को ये बताया कि सपनों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हर दिन एक छोटा कदम उठाओ और देखना तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। रवि ने यह बात दिल से मान ली। उसने तय किया कि वह हर दिन कुछ नया सीखेगा। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने लगा, खेतों में काम करके अपने पिता की मदद की और शाम को जाकर गांव की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ सालों बाद रवि ने गांव के सबसे अच्छे स्कूल में टॉप किया और उसे शहर में पढ़ने का मौका मिला। उसने अपने छोटे छोटे कदमों से अपने बड़े सपने को हासिल कर दिया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे सपना कितना भी बड़ा हो, शुरुआत छोटे कदमों से ही होती है। मेहनत और धैर्य से सब कुछ मुमकिन है। तो बस छोटे कदम बढ़ाते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपका सपना पूरा होगा।
0: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: आजकल एक लाइन ना तो बहुत कॉमन हो गई है, भाई डाइट करना है, एक काम करते कल से स्टार्ट करते हैं। आप भी ऐसा ही करते हो ना, जानता हूं मैं यार। हेलो फ्रेंड्स, माइसेल्फ आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग एमजीएम 90.8 एफएम। शुगर कम बोलने के बाद भी हम सीक्रेटली बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक और मिठाई में पूरे हिसाब से बराबर शुगर लेते हैं, और कहते हैं कि यार डाइट करना है लेकिन कल से करूंगा। आपने ये भी सुना होगा, बस ये पिज्जा लास्ट है, ये गुलाब जामुन आखिरी है, मंडे से पक्का डाइट, यार एक तारीख से तो पक्का डाइट करूंगा, और वो दिन कभी आता ही नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि डाइट स्टार्ट करने का प्लान हम इतनी बार बनाते हैं कि लगता है प्लानिंग ही सच्ची एक्सरसाइज है। कभी बर्थडे आ गया, कभी किसी का फंक्शन आ गया, कभी दोस्त ने ट्रीट दे दिया, इस वजह से डाइट हमारा रह जाता है, और फिर हम खुद कन्विंस करते हैं लाइफ तो एक ही बार मिलती है, कहाँ खाना कम कीजिएगा। वैसे बाय द वे दोस्तों, एक बात याद रखिए, डाइट का मतलब खाना कम करना ऐसा नहीं होता। डाइट का मतलब होता है खाना बैलेंस में खाना और प्रॉपर खाना। आप सिंपल कर सकते हो एक चीज, आज एक बिस्किट कम कर लिया, आज थोड़ा ज्यादा वॉक किया, आज कोल्ड ड्रिंक स्किप कर दी, आज शुगर थोड़ी कम खा ली, आज फूड फास्ट फूड थोड़ा अवॉइड किया, इसके जरिए ना तो आप आपका डाइट स्टार्ट कर सकते हो। एक बात याद रखिए, डाइट कल से स्टार्ट। तो एक काम कीजिए, कल का वेट मत कीजिए, आज एक छोटा सा स्टेप लीजिए, क्योंकि फिटनेस की जर्नी कल से नहीं अभी से शुरू होती है।
1: किस्सों का कारवा विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: नमस्कार, छत्रपती संभाजीनगर
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM।

0: अक्सर हमने एक लफ्ज के बारे में सुना होगा, सेल्फ लव। कैरा रील्स में हमने देखा है या मोटिवेशनल वीडियोस में देखा है सेल्फ लव, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है? तो इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ है साइकेट्रिक्स डॉक्टर अमोल पात्रीकर सर। हेलो सर, आपका स्वागत है।
1: हेलो,
0: कैसे हो सर आप?
1: आई एम गुड।
0: सर, आपने किया है खुद से प्यार, सेल्फ लव?
1: हाँ बिल्कुल करता हूँ।
0: कब से?
1: इसके बारे में समझ आई तब से, और उसके वैल्यूज पता चले, देन आई स्टार्टेड लिविंग माय सेल्फ।
0: एग्जैक्टली, जब खुद की वैल्यू पता चलती है, उस चीज की वैल्यू पता चलती है, तो इंसान सेल्फ लव करता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे सर, क्योंकि सेल्फ लव ये बहुत सुना है, लेकिन सेल्फ लव और सेल्फिश होने में एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है?
1: देखो, सेल्फ लव यानी क्या है ना, कि खुद की वैल्यू करना, ठीक है। जैसे हमें फिजिकली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली हमें खुद को फिट रखने के लिए हम जिस तरह से उसके लिए हम अटेम्प्ट करते हैं या हम ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें अपने अंदर से खुश रहना है, मुझे फिजिकली बहुत ज्यादा एग्जर्ट नहीं करना है, वैल्यूज भी मुझे बरकरार रखने हैं, और मुझे दूसरों का भी रिस्पेक्ट करना है, देन हम उसे कहते हैं कि हाँ ये सेल्फ लव है। अब सेल्फ लव में क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें आती है कि जिसमें कि क्या होता है, बहुत सारे लोग है ना आउट ऑफ द वे जाके खुद को, यानी ट्रबल अगर हो रहा है या परेशानी हो रही है तो भी दूसरों के लिए वो बहुत सारी चीजें करते हैं, पर इसमें क्या होता है ना कि उनमें उससे स्ट्रेस आ सकता है, उनमें फिजिकल एग्जर्शन आ सकता है, बर्नआउट हो सकता है, तो लोगों को उसके लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। तो हम लोग हमारे खुद के लिए, हमारे फैमिली के लिए हम कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तब उसे कहा जाता है कि सेल्फ लव। इक्वली बट हम लोग दूसरे के वैल्यूज भी रिस्पेक्ट करते हैं एंड दूसरों को भी उनकी इमोशनल और उनकी भावनाएं का भी हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, पर हम हमारे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मैं खुद के लिए कुछ चीजें करूंगा जो कि मेरे घर वाले मेरे लिए बेनिफिशियल हो, या मेरे फिजिकली मुझे हार्म ना करे, इमोशनली हार्म ना करे, साइकोलॉजिकली हार्म ना करे, और मैं कुछ बाउंड्री सेट करूं, तो मुझे कहते हैं कि सेल्फ लव है। सेल्फिश मींस क्या है ना, उसमें चीजें सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने लिए ही करना, दूसरे के वैल्यूज का सम्मान नहीं करना। अगर उसे दिक्कत आ रही है मेरे से कुछ बात करने से, या मैं एक चीज इस तरह से डिसीजन दे रहा हूँ कि दूसरों को हार्म हो रहा है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसे तकलीफ हो रही है दूसरों को, पर मैं मेरे ही बारे में सोच रहा हूँ, देन हम उसे कहते हैं कि देन दिस इज सेल्फिश लव। बट सेल्फ लव में इट इज नॉट देयर। सेल्फ लव में यह है कि हम खुद के लिए कुछ बाउंड्रीज सेट करते हैं, हम हमारा खुद का ख्याल करते हैं, क्योंकि मैं जैसा, अगर मेरे कोई प्रिय व्यक्ति हो या मेरा कोई प्रिय फ्रेंड हो जिसके हम आदर सम्मान करते हैं, उसे रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह हम खुद का भी करना चाहिए, हमारे खुद के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में सोच, तब उसे कहा जाता है कि दिस इज सेल्फ लव।
0: तो सेल्फ लव क्या होता है ये अभी हमने जाना, तो ये सारी बातें याद रखिएगा और खुद से प्यार करते रहिएगा। ऐसे टिप्स हम हर दिन जानेंगे अपने इस शो में, तब तक स्टे ट्यून्ड।
2: Only on MGM 90.8

0: is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrists, इनके guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष hospital, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर.
3: Your dream is to become an engineer, an architect or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
4: बाय वन गेट वन फ्री होय होय खरं एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा. स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर.
5: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री.
4: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल. स्वतंत्र दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत.
5: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
4: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत. पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 5503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991.

फरमाइश फरमाइश यानी फरमाइश आपकी फरमाइश सराखों पर MGM 90.8 FM वर आरजे अदनान तुमच्या सोबत आलाय आणि आज श्रेयस माने यांची फरमाइश आलेली आहे या गाण्यासाठी. वाह क्या बात है यार, मेरे सपनों की रानी कब आओगी. लगता है श्रेयस जी को बहुत इंतजार है अपने सपनों की रानी का. आएगी आएगी, लेकिन उसके पहले आपका ये फेवरेट गाना आपके कानों पर आने वाला है. सपनों की रानी से पहले आपका फेवरेट गाना प्ले करते हैं श्रेयस जी. आणि हो, तुमची सुद्धा काही फरमाइश असेल तर व्हॉट्सअप करा 9359320080 वर 9359320080 आणि ऐकत राहा MGM 90.8 FM.

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
5: For admission, contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.
6: बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
5: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा या कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
6: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत
5: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
6: ही ऑफर 9-17 August 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ति चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

ऐसा कहा जाता है। खैर, जागना बहुत जरूरी है। और बात कुछ ऐसी है कि अपने शहर में गड्ढे इतने हो गए थे कि हर कोई इस पर बात कर रहा था और सोच रहा था कि यार प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन प्रशासन ने फाइनली ध्यान देना शुरू कर दिया है और शहर में जितने भी गड्ढे थे ना, तो उनको ठीक ठाक करने का त्यांचे और पैच वर्क करने का काम प्रशासनाने शुरू केलेला आहे। आणि आपल्या मुंडा नाका ब्रिजच्या खाली खूप मोठे खड्डे तयार झाले होते, तर त्यासाठी आता 2 दिवसापासून काम सुरू आहे। आणि शहरातील ज्या ज्या भागात असे खड्डे झालेले आहेत त्या भागात खड्डे बुजण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करणार आहे आणि त्या त्या एरियामध्ये काम सुरू करणार आहेत। आणि हे खड्डे म्हणजे काय, पूर्णपणे रस्ता नवीन नाही तयार करतायत, ते खडी मुरुम आणि त्यावर सिमेंट टाकून खड्डे बुजण्याचं काम सध्या हे सुरू आहे, म्हणजे पॅच वर्क करण्याचं हे काम सुरू आहे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन ये पूरे काम को 1 करोड़ का खर्च लगने वाला है। गड्ढे में ना अब तक 350 या 400 से ज्यादा लोग गिरकर जख्मी हो गए है। तो इतना नुकसान होने के बाद लेट लतीफ तरीके से प्रशासन की आंखें खुल गई है और बेचारे आप काम करने लग गए। खैर, अच्छी बात है, काम करना भी चाहिए, लेकिन इसके पहले भी ना तो शहर में ऐसे गड्ढे थे तो उसको भी ठीक ठाक करवाया गया था, लेकिन पहले बारिश दूसरी बारिश के अंदर पूरा गड्ढे में जो मटेरियल था वो बहकर चला गया। एंड अब देखा जाएगा कि नए तरीके से काम हो रहा है, 1 करोड़ का खर्चा पूरे शहर में लगने वाला है रास्ते ठीक करने के लिए, तो ये ठीक होने के बाद कितने दिन टिकेंगे या बारिश के पानी से बह जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट एक बात तो है, देर आए दुरुस्त आए। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
2: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
1: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
2: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
3: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत।
1: पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।
4: रंगभूमीच्या कला विश्वाचा अनुभव घ्यायचा आहे? मग तयार व्हा चिकिषा नाट्य महोत्सव 2026। नाट्यप्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमाची खास मेजवानी। या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भांड, सवाल जवाब, MHJ सुटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्यप्रयोग। मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगेशा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह MGM परिसर छत्रपती संभाजीनगर। तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे।

शहर की ना तो अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान होती है, और उस पहचान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है उसकी धरोहर का। हमारा अपना शहर छत्रपति संभाजीनगर, जिसे हम प्यार से सिटी ऑफ गेट्स भी कहते हैं, याद तो है ना आपको। और ये दरवाजे सिर्फ पत्थरों से और लकड़ियों से नहीं बने, बल्कि इनमें छुपी है हमारे शहर की सदियों पुरानी कहानी, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान। यू नो व्हाट, भड़कल गेट हो, दिल्ली गेट हो, रोशन गेट हो, या फिर कोई भी ऐतिहासिक धरोहर, ये सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई हुई विरासत है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी धरोहर को जाने, उनकी अहमियत समझे और दूसरों तक वो कहानियां पहुंचाए, क्योंकि जब हम अपनी विरासत को संभालते हैं तभी हमारी पहचान आने वाले कल तक कायम रहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी है मेरी माटी मेरी धरोहर अभियान, मेरे शहर की पहचान मेरी जिम्मेदारी है। तो अपने शहर की जो धरोहर है, जो अपने यहाँ पर ऐतिहासिक किले है, गेट्स है, और भी जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो उनको संभालना, उनको मेंटेन करना और उनकी साफ सफाई रखना, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, बस प्रशासन की नहीं, मेरी और आपकी भी है। तो ये बात का भी ख्याल रखिए, क्योंकि यही तो इतिहास है जो हम आने वाले जनरेशन तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए फिर अपने धरोहर को सिर्फ देखे नहीं, उसे जाने समझे और संभाल कर रखे। तो वादा कीजिएगा कि अपनी धरोहर संभालने के लिए आप भी मदद करेंगे, क्योंकि मेरा गाँव मेरी धरोहर। स्टे ट्यून्ड। All is well with RJ Adnan.

0: Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrics, इनके guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.
3: Your dream is to become an engineer, an architect, or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture, and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities, and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
4: बाय वन गेट वन फ्री होय होय खरं एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा. स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्यामकुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर्स.
5: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा या कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री.
4: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंदही डबल. स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत.
5: द्वारकादास श्यामकुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
4: ही ऑफर 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत. पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991.

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होमियोपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
2: For admission, contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.
5: Buy one, get one free. Hoi hoi, khara, ek gyan, ek free milwa. Swatantra dinacha khas nimittane Dwarkadas Shyamkumar ghiun aale aahe shandar offers.
2: Banarasi satin sari, printed dola sari, designer sari, zamdani silk, kimaya cotton, kiva ladies dress. Tumchi favorite sari, buy one, get one free.
5: Manje style double aani shopping sa anand hi double. Swatantra din sazra kara नव्या शॉपिंग सोबत।
2: द्वारकादास श्यामकुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, दात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
5: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्यामकुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ति चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

0: बोलते क्यों नहीं?
1: अगर मैं आपसे कहूँ कि 13 साल से छोटी उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया यूज करने पर पाबंदी आ जाए तो क्या? बड़ा सवाल है ना। आजकल हम देखते हैं कि हर एक बच्चा सोशल मीडिया पर है, इंस्टाग्राम फेसबुक अकाउंट तो उनका है ही, इतने छोटी उम्र में उनका इंस्टा अकाउंट होता है, फॉलोअर्स होते हैं। और एक ऐसा भी बात सामने आई है कि बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी और प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्राइवेट बिल लाने की कोशिश अभी हो रही है, जिसके ऊपर डिस्कशन भी शुरू है। सवाल ये उठता है कि ऐसा बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आज बच्चे ना तो सिर्फ रील्स और वीडियो नहीं देखते, उनका पर्सनल डेटा भी कलेक्ट होता है, ऑनलाइन गेमिंग का यूज बढ़ रहा है, टारगेट एडवर्टाइजमेंट उन तक पहुंचते हैं और साथ ही साथ साइबर बुलिंग और इनएप्रोप्रिएट कंटेंट भी उन तक पहुंचता है। तो इसी वजह से बच्चों के सोशल मीडिया यूज को लेकर कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज ने चाइल्ड सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं किए तो फाइन कितना हो सकता है, करोड़ में या लाखों में, ये भी अभी क्लियर होना बाकी है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये बिल ऐसा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए जिसमें 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया यूज करने पर पाबंदी लगनी चाहिए? कुछ रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। डीएम ऑन इंस्टा आरजे अदनान बताइए एंड स्टे ट्यून्ड।
2: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक ज्ञान एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
2: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
1: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
2: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
3: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत।
1: पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।
4: रंगभूमीच्या कलाविश्वाचा अनुभव घ्यायचाय? मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026। नाट्यप्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमाची खास मेजवानी। या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भांड, सवाल जवाब, MHJ सुटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्यप्रयोग। मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगीशा नाट्य सहवास 2026, 21, 22 आणि 23 ऑगस्ट, रुक्मिणी नाट्यगृह, MGM परिसर, छत्रपती संभाजीनगर। तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे।

क्या हो अगर 13 साल से कम उम्र के बच्चों पर पाबंदी लग जाए सोशल मीडिया यूज करने के लिए। सो ऐसा एक बिल आने वाला है और इस बिल का नाम है शील्ड 2025। इसका मेन पर्पस क्या है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के पोटेंशियल रिस्क से प्रोटेक्ट करना बच्चों को। इस प्राइवेट बिल में प्रपोज किया गया है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं या तो फिर कर पाएंगे। लेकिन ये बात बस सोशल मीडिया तक नहीं है, बिल में बच्चों के पर्सनल डेटा कलेक्शन, ऑनलाइन गेमिंग और टारगेट एडवर्टाइजमेंट को लेकर भी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। और अगर कोई कंपनी ये रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करेगी तो उन पर कार्रवाई भी हो सकती है और उन पर पेनल्टी लग सकती है तकरीबन 10 करोड़ रुपए तक की। मतलब डिजिटल वर्ल्ड में बच्चों की सेफ्टी सिर्फ पेरेंट की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, टेक्नोलॉजी कंपनीज की भी रिस्पांसिबिलिटी बन चुकी है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि AI के मिसयूज को लेकर डीप फेक लेजिस्लेशन की भी डिस्कशन अभी पार्लियामेंट में चल रही है, ऐसा भी कहा गया है। शील्ड 2025 अभी एक प्राइवेट मेंबर्स बिल का प्रपोजल है, ये करंट लॉ में अभी तक आया नहीं, इस पर अभी डिस्कशन शुरू है। अगर ये बिल पास हो गया ऐसे रूल्स और रेगुलेशन लग सकते हैं 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया यूज करने पर। और इसका मोटिव यही है कि बच्चों की सेफ्टी और उनका जो डेटा है वो कहीं और ना चला जाए एंड जो इंटरनेट पर वो गलत चीजें देखते हैं उन्हें वो अवॉइड करें, तो ये बिल का ये मोटिव है। सो देखा जाएगा कि ये बिल कब तक पास होगा। स्टे ट्यून्ड।

0: help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: Stress, anxiety, depression या addiction, क्या ये problems आपकी life को affect कर रही हैं? तो help लेने में देर मत कीजिए.
2: Dr. Amol Patrikar, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, neuropsychiatrist, इनके guidance में mental health और addiction related problems का treatment किया जाता है.
1: यहाँ available है men और women के लिए separate admission facilities, addiction treatment, ECT counseling, marriage counseling, child guidance, stress management, family counseling और psychological counseling.
2: उत्कर्ष Hospital, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन फाइव, छत्रपति संभाजी नगर.
3: Your dream is to become an engineer, an architect or to make a name for yourself in the world of technology. So MGM University's JNEC is the best option for you. Courses accredited by AICTE and COA, BTech, MTech, Bachelor of Architecture, Master of Architecture and MCA. Here you get excellent placement, innovation and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
4: बाय वन गेट वन फ्री होय होय खरं एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा. स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर.
5: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री.
4: म्हणजे स्टाईलही डबल आणि शॉपिंगचा आनंदही डबल. स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत.
5: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत.
4: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत. पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991.

0: कहते हैं ना कि आखा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ, और फिर से साबित हो गया है। देखो भाई, आवारापन 2 तो थिएटर में रिलीज हो गई है, जहां वहां पर बस आवारापन 2 की बातें शुरू है और हाउसफुल शोज इसके जा रहे हैं। 19 साल के बाद इसका सीक्वल आया है। 2007 में आवारापन आई थी और अब 2026 में आवारापन 2 आ गई थी। लग रहा था कि फिल्म कैसी कमाई करेंगे, लेकिन देखते ही देखते ना तो इसने तकरीबन 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर दिया है। एंड बात करें फिल्म की कहानी, तो भाई देखो, आवारापन पहली जहाँ पर एंड हुई थी ना, तो वहीं से अब आवारापन 2 स्टार्ट होती है। शिवम पंडित का फिर से एकदम एक्शन हमें दिखाई देता है एंड फिल्म एकदम हैप्पीनेस में आती है, सैडनेस में आती है, और जो चीज़ें हमें ट्रेलर में नहीं दिखाई गई थी, हमें लग रहा था कि कहानी क्या होगी, किस तरीके से जाएगी, लेकिन उससे भी बहुत अलग अलग चीज़ें हमें फिल्म के अंदर देखने को मिलेगी और एक के बाद एक ये कहानी आगे बढ़ती है। और इस फिल्म के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात नहीं, वो मैं नहीं बताऊंगा, अगर वो बता दिया तो जिन लोगों ने अब तक मूवी नहीं देखी वो कैसे देख पाएंगे। और बात करें फिल्म के गानों की, चाहे फिर यार आवारापन 1 के गाने हो या तो फिर 2 के गाने हो, सबसे ज्यादा काम मुझे लगता है इनके गानों पर किया गया है। हर एक मोमेंट पर ना ऐसा बैकग्राउंड स्कोर प्ले होता है जो कि हमें पास्ट में लेकर जाता ही है। और आवारापन के जो कुछ सीन्स थे, जो मेमोरीज थी शिवम पंडित की, वो भी बार बार हमें पर्दे पर दिखाई देती है और कहीं ना कहीं हम दो फिल्में एक साथ देख रहे हैं ऐसा फील भी आता है। बाकी तो गाने लाजवाब है ही। तो अब तक आपने नहीं देखी फिल्म तो देखिएगा जरूर, मुझे तो बहुत पसंद आई है भाई। हाँ, 19-20 तो हर एक फिल्म में होता है, थोड़ी कहानी लेंदी नजर आई, लग रहा था कि यार भाई ये कहानी इतनी ना खींची जाती तो भी चल जाता है, बट फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छा कमाई कर रही है एंड लोगों को पसंद आ ही रही है, क्योंकि नॉस्टैल्जिक ये फिल्म है ही। बाकी आपने अगर फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी बताइए जरूर। डीएम कहा करोगे इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर। अब आवारापन की बात हो ही रही है तो ये गाना आवारापन का एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड
1: ओनली ऑन एमजीएम 90.4।

0: wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 9067612000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होमियोपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
5: For admission, contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.
6: बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
5: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
6: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंग चा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
5: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
6: ही ऑफर 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता, द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ति चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
2: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
1: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल। स्वतंत्र दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
2: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
3: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड, 9503109429, त्रिमूर्ती चौक, 9699703562, आणि चिकलठाणा 9765822991।
4: रंगभूमीच्या कलाविश्वाचा अनुभव घ्यायचा आहे? मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026। नाट्यप्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमांची खास मेजवानी। या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भांड, सवाल जवाब, MHG सुटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्यप्रयोग। मराठवाडा आर्ट, कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगीशा नाट्य सहवास 2026, 21-22 आणि 23 ऑगस्ट, रुक्मिणी नाट्यगृह, MGM परिसर, छत्रपती संभाजीनगर। तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे।

अरिजीत सिंह की आवाज में एक दीवाने की दीवानियत, इस फिल्म से गाना भी आप एंजॉय कर रहे थे, तेरा हुआ। और एक सुनने के बाद कहीं ना कहीं आपको भी किसी की याद हिट कर ही गई होगी। खैर, अभी तो मैं चाहता हूँ अब अपनी गली और अपना दिन एंजॉय करने के लिए मैं तो चला, बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा, जिंदगी को जिंदा दिली से गुजारिएगा। और हाँ, आज का शो आपको कैसा लगा ये बताना मत भूलिएगा। कहाँ बताओगे? डीएम की जगह इंस्टा पर, आरजी अदरानी से इंस्टा पेज पर। और वहाँ पर आ ही गए तो मुझे भी आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, आरजी अदरानी, ये मेरा इंस्टा आईडी है, तो फॉलो भी कीजिएगा। ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल सैटरडे सुबह ठीक 7 बजे। और जाते जाते एक ऐसा गाना भी आपको सुनाने वाला हूँ जो कि आपके दिमाग में आजकल अटक ही गया है, नवजोत आहूजा की आवाज़ में। स्टे ट्यून्ड ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

जीएम 90.8 एफएम सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे, ये अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात, एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।
1: दिसली सवारे मधे आपुलाचा तोरा मधे दिसली सवारे

0: राजीनगर.
1: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM.

0: दिल की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: की आवाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये दूरियां,
0: अपना रेडियो अपनी बातें, गीत खबरें जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आज मनीषा आपके साथ। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा रहा होगा। अगर दिन थोड़ा व्यस्त भी रहा हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब समय है थोड़ा रुकने का, मुस्कुराने का और अपने लिए कुछ खूबसूरत पल निकालने का। शाम का समय अपने आप में बहुत खास होता है। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब सूरज ढलता है तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी हमें यही कह रही हो कि अब थोड़ा आराम कर लीजिए। तो चाहे आप घर लौट रहे हो, परिवार के साथ हो, दोस्तों के साथ हो या फिर अकेले हो, इस शाम को अपने चेहरे की मुस्कान के नाम कर दीजिए। आने वाले कुछ समय तक हम आपके साथ रहेंगे शानदार गानों, दिलचस्प बातों और ढेर सारी अच्छी ऊर्जा के साथ। तो कहीं मत जाइए, क्योंकि ये शाम अब और भी खूबसूरत होने वाली है। इस खूबसूरत शाम की शुरुआत करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आपका फेवरेट शो दिल से, मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा, एंड ऑफ कोर्स साथ मत छोड़िएगा हमारा ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम, क्योंकि साथ है तो बात है।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। कहते हैं कि सफलता पाने के लिए सिर्फ बड़े सपने देखना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उन सपनों के लिए हर दिन मेहनत करना भी ज़रूरी होता है और यही आदत कहलाती है कंसिस्टेंसी। अक्सर हम किसी काम की शुरुआत तो पूरे जोश के साथ करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारा उत्साह, हमारी एनर्जी कम हो जाती है। यही पर बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहते हैं, वही एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। सोचिए, अगर एक पौधे को रोज थोड़ा थोड़ा पानी दिया जाए तो वो एक दिन बड़ा और मजबूत पेड़ बन जाता है। ठीक वैसे ही हमारी छोटी छोटी रोज की कोशिशें भी समय के साथ बड़ी सफलता में बदल जाती है। इसलिए अगर आपका कोई सपना है, कोई लक्ष्य है, तो बस एक बात याद रखिए, हर दिन थोड़ा सा एकदम आगे बढ़िए। चाहे रफ्तार धीमी हो, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि रोज की गई मेहनत का परिणाम होती है। तो दोस्तों, आज खुद से एक छोटा सा वादा कीजिए, आप अपने सपनों के लिए हर दिन लगातार मेहनत करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। इसी सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं कुछ शानदार गाने जो आपके हौसलों को और भी बुलंद कर देगा। ओनली ऑन MG 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा।
5: For admission, contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.
6: बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
5: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा या कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
6: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंग चा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
5: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
6: ही ऑफर 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता, द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ति चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो दिल से और मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त आरजे मनीषा आपके साथ। बारिश की हल्की हल्की फुहारे, ठंडी ठंडी हवा और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू, ऐसे मौसम में अगर गर्मा गर्म कांदा भजिया और एक कप चाय मिल जाए तो मज़ा ही कुछ और हो जाता है। मानसून का मौसम अपने साथ सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि ढेर सारी प्यारी यादें भी लेकर आता है। परिवार के साथ बैठकर बातें करना, खिड़की से बारिश को निहारना और गर्मा गर्म भजियों का स्वाद लेना, यही तो इस मौसम की असली खुशी है। कांदा भजिया का नाम सुनते ही कई लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। बाहर बारिश हो रही हो और घर में ताजे ताजे भजिये बन रहे हो तो पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है। लेकिन दोस्तों, स्वाद के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए। हमेशा साफ और ताज़ा खाना खाइए और बारिश का आनंद सेफ तरीके से लीजिए। तो अगर किसी शाम बारिश हो रही है तो अपने परिवार या दोस्तों के साथ गर्मा गर्म कांदा भजिया और चाय का मजा जरूर लीजिए। छोटी छोटी खुशियां ही जिंदगी को सबसे खूबसूरत बनाती है। इसी प्यार से मॉनसून वाले एहसास के साथ अब सुनते हैं कुछ शानदार गाने। बने रहिए आप अपने फेवरेट शो के साथ ओनली ऑन MG 90.8 FM। साथ है तो बात है।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक ज्ञान एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
2: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
1: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंदही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
2: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
3: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562, आणि चिकलठाणा 9765822991।
4: रंगभूमीच्या कलाविश्वाचा अनुभव घ्यायचाय? मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026। नाट्यप्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमाची खास मेजवानी। या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भांड, सवाल जवाब, MHG सुटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्यप्रयोग। मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगीशा नाट्य सहवास 2026 21-22 आणि 23 ऑगस्ट रुक्मिणी नाट्यगृह, MGM परिसर, छत्रपती संभाजीनगर। तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे।

0: बोलते क्यों नहीं?
1: यार आपको पता है कि एक गाना सुपर हिट कब होता है?
2: दिस इज आरजे मनीषा विद यू एंड पूरे स्वैग से स्वागत करती हूँ मैं आपका इन द शो MGM 90.8 FM.
1: तो यार जाहिर सी बात है, एक गाने को सुपरहिट बनाने के लिए उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। जैसे कि लिरिक्स परफेक्ट होने चाहिए, म्यूजिक परफेक्ट होने चाहिए, उसके साथ साथ गाने वाला सिंगर जो है वो भी परफेक्ट होना चाहिए, और इसके बाद जो आउटपुट निकलता है ना वो होता है ब्लॉकबस्टर। अब आप ही सोचो ना कि इतने सालों बाद भी हम पुरानी मूवीज को याद रखते है या पुराने एक्टर को याद रखते है, ऐसा क्यों होता है भला? पता है कहीं ना कहीं हम उनके गाने सुनते हैं और उन गानों से याद आता है कि अरे यार ये गाना तो इस मूवी का है और इस मूवी में तो ये एक्टर था और ये एक्टर तो कमाल का है। मतलब ये सारी बातें हमें गाने की वजह से याद रखते हैं। तो मूवी के लिए गाना बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉरेन कंट्रीज में गाने का रिवाज होता नहीं है, ज्यादातर वो अपनी स्टोरी पे और एक्शन पे फोकस करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यार हमारे इंडियन कल्चर में गानों को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। और हमारी सारी मूवीज के रिलीज से पहले सॉन्ग एल्बम रिलीज होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला कि गाने हमारी मूवीज की जान होते हैं। तो आइए सुनते हैं ऐसा ही एक बेहतरीन सॉन्ग। स्टेडियम टू MGM 90.8 FM साथ है तो बात है।

0: HTM University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join MGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजी नगर।
3: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। सो MGM University's JNEC इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कोर्स इज एक्रेडिटेड बाय AICTE एंड COA, BTech, MTech, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड MCA। हियर यू गेट एक्सीलेंट प्लेसमेंट, इनोवेशन and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.
4: बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
5: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किंवा कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
4: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंग चा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
5: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
4: ही ऑफर 9-17 August 2026 पर्यंत। पत्ता, द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

0: बहुत लोगों ने बोला है कि एज बस एक नंबर ही तो होता है, पर क्या हम इन बातों पे बिलीव करते हैं?
1: दिस इज आरजे मनीषा विद यू एंड पूरे स्वैग से स्वागत करती हूँ मैं आपका इन द शो
0: यार, आज इस बात पे ना मैं दिल से बिलीव करने लगी हूँ कि एज बस एक नंबर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें आनंद बख्शी की, जी हाँ, ये एक बेहतरीन पोएट और लिरिक्स राइटर है जिन्होंने अपने गाने लिखने की जर्नी 90s से स्टार्ट की है। और आप बिलीव नहीं करोगे कि 2000 के एरा तक वो एक्टिव थे। मतलब अगर आप DDLJ और मोहब्बतें जैसी मूवी का नाम ले लो, उनके गाने आज भी हमारे जुबान पे छाए रहते हैं। और आपको पता है ये सारे गाने लिखे हैं आनंद बख्शी जी ने। जैसे कि हम कहते हैं कि एज की वजह से इंसान अपने एज को छोड़ के किसी और की एज की थॉट्स को रिलेट नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पर बात पूरी उल्टी पड़ गई है, क्योंकि ये जो एज वाला रूल है ना, वो कुछ लोगों पे बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। कुछ आर्टिस्ट होते हैं, कुछ सिंगर होते हैं और कुछ एक्टर होते हैं जिनके ऊपर एज मैटर ही नहीं करती। और अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आनंद बख्शी का आप यही गाना सुन लो। स्टे ट्यून्ड एंड जिम 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू, ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर, अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस, गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
4: For admission, contact 9

0: जब हम गाने सुनते हैं ना तो बस एक्टर की तारीफ करते हैं या एक्ट्रेस की तारीफ करते हैं।
1: दिस इज आरजे मनीषा विद यू एंड पूरे स्वैग से स्वागत करती हूँ मैं आपका इन द शो On MGM 90.8 FM.
0: उम्र के साथ साथ हम कितना कुछ सीख जाते हैं। बचपन में मैं गाने सुनती थी ना तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस के ऊपर होता था कि वाव यार कितने अच्छे दिख रहे हैं, कितना अच्छा डांस कर रहे हैं और मुझे तो लगता था कि वही वो गाना गा रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ समझ आया कि उनके पीछे छुपी हुई आवाज किसी और की होती है और फिर मैं तारीफ करने लगी सिंगर्स की। यार लता मंगेशकर जी की आवाज कितनी बेहतरीन है, उदित नारायण कितने बेस्ट सिंगर है, लेकिन इन सारी बातों से परे एक बात थी जो थी कि इस सॉन्ग के लिए जो म्यूजिक और जो लिरिक्स इम्पोर्टेंट है वो किसके है। और धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि म्यूजिक कंपोजर और लिरिक्स राइटर भी सॉन्ग के सुपरहिट होने में या सॉन्ग के पसंदीदा आने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके

आज जब वो गाने में दोबारा सुनती हूँ ना, बिलीव ही नहीं कर पाती कि ये वही सॉन्ग राइटर और म्यूजिक कंपोजर थे जिनको मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। आनंद बख्शी का एक और सॉन्ग सिर्फ आपके लिए। स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.8 FM, साथ है तो बात है।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खरं, एक ज्ञान एक फ्री मिळवा। स्वतंत्र दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्याम कुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
2: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
1: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंगचा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत
2: द्वारकादास श्याम कुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
3: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता द्वारकादास श्याम कुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।
4: रंगभूमीच्या कलाविश्वाचा अनुभव घ्यायचाय? मग तयार व्हा जिगीशा नाट्य महोत्सव 2026। नाट्यप्रयोग, अभिवाचन, परिसंवाद आणि रंगभूमीशी संबंधित विविध कार्यक्रमाची खास मेजवानी। या महोत्सवाचे उद्घाटक प्रसिद्ध अभिनेत्री रत्ना पाठक, तर नाट्यविषयक पुस्तक प्रदर्शनाचे उद्घाटक ज्येष्ठ लेखक बाबा भाण, सवाल जवाब, MHG सुटकेस आणि भरड यांसारखे दर्जेदार नाट्यप्रयोग। मराठवाडा आर्ट कल्चर अँड फिल्म फाउंडेशन आणि महात्मा गांधी मिशन आयोजित जिगीशा नाट्य सहवास 2026, 21-22 आणि 23 ऑगस्ट, रुक्मिणी नाट्यगृह, MGM परिसर, छत्रपती संभाजीनगर। तरी सर्व रसिक प्रेक्षकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे।

0: जाहिर सी बात है कि हर किसी का अपना सपना होता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए पता नहीं क्यों लेकिन मुंबई जाना ही पड़ता है।
1: दिस इज आरजे मनीषा विद यू एंड पूरे स्वैग से स्वागत करती हूँ मैं आपका इन द शो ओनली ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
0: आनंद बख्शी की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही थी जिन्होंने टीनेज से ही शायरियाँ लिखना स्टार्ट कर दिया था पर कभी उन्होंने सोचा नहीं कि मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाऊंगा। इस तरफ बढ़ने की बजाय वो आर्मी नेवी इस जैसे फील्ड में गए लेकिन कहते हैं ना सपने हमें चैन से जीने नहीं देते और हम फिर उसी तरफ बढ़ जाते हैं जहां पर हमारी किस्मत हमें ले जाना चाहती है। तो आनंद बख्शी जी भी मुंबई चले आए और धीरे धीरे उन्होंने अपना इरादा पक्का किया कि उन्हें अब बॉलीवुड इंडस्ट्री और म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है। उसी के साथ साथ उन्हें कुछ गाने मिले जो इनिशियली बहुत सुपर हिट हुए और उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। बहुत से गाने हैं, आइए सुनते हैं उसमें से ये एक। स्टे ट्यून्ड एमजीएम 90.8 एफएम, साथ है तो बात है।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर,
0: पवन करे शोर।
1: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
0: पवन करे शोर,
1: हाँ

फिल्मी फ्राइडे में आरजे अदनान आपके साथ है ऑन एमजीएम 90.8 FM। हम फ्राइडे के दिन ना तो बॉलीवुड के कुछ ऐसे किस्से जानते हैं, कुछ फिल्मों के बारे में बात करते हैं। तो फिल्मी बातों में आज हम बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म की बात करने वाले हैं जिस फिल्म के गाने डायलॉग हम सभी को ना तो मुंह जबानी याद है। इस फिल्म के मीम्स भी सोशल मीडिया पे ना तो बहुत ही वायरल होते हैं। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें 9 गाने थे। जी हाँ, 9 गाने इस फिल्म के अंदर थे। और आज के जमाने के फिल्मों में ना तो बस तकरीबन 3 से 4 गाने हुआ करते, बट ये फिल्म के अंदर पूरे 9 गाने थे। और एक ऐसा गाना था जिसके अंदर पूरी की पूरी फिल्म की कहानी बदल दी जाती है। कुछ याद आया आपको कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ? चलो यार, एक आपको हिंट देता हूँ कि जब कभी भी ना तो आप खीर खाओगे या खीर की बात होगी ना तो इस फिल्म की आपको याद आएगी ही। इसी के साथ जब भी IAS बनने की बात होगी तो इस फिल्म के मेम्स हो या तो फिर इस फिल्म के कुछ किस्से आपकी नजरों के सामने आएगी ही। आप इतनी सारी मैंने हिंट दे दी तो बताइएगा आपके आज हम कौन सी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। DM कीजिए RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर और इस फिल्म के बारे में और भी ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए इसी फिल्म से गाना एंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद RJ अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

भाई पूरा बॉलीवुड एक तरफ और अपना हीरा ठाकुर एक तरफ, आरजे अदनान आपके साथ है ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। और आज हम फिल्मी बातों के अंदर, फिल्मी किस्सों के अंदर बात करने वाले हैं और बात कर रहे हैं सूर्यवंशम इस फिल्म के बारे में। जी हाँ, सूर्यवंशम के बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने आपको कुछ देर पहले पूछा था कि जब कभी आपको खीर की याद आएगी, खीर खाओगे तो इस फिल्म की आपको याद जरूर आएगी, तो बहुत लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है कि सूर्यवंशम वो फिल्म है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एग्जैक्टली मेरी जान, क्योंकि इस फिल्म के जो कैरेक्टर है, जो हीरा ठाकुर की कहानी है, इस देश का हर एक बच्चा जानता है। और इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है अपने सेट मैक्स का, क्योंकि इसकी वजह से ना तो हमें इतनी बार सूर्यवंशम फिल्म देखने को मिली कि क्या ही बोले। वीक में ना तो कम से कम 2 से 3 बार तो सूर्यवंशम फिल्म सेट मैक्स पर आती ही है, मतलब आती ही है। और मुझे भी ना तो बचपन से एक ही सवाल दिमाग में सताता था कि यार ऐसी क्या बात हुई कि सेट मैक्स ना तो सूर्यवंशम ये फिल्म इतनी बार बार बार क्यों डालता है, इसके पीछे भी कुछ वजह होगी ना। आपको भी ना तो ये सवाल सताता होगा कि यार बाकी भी फिल्म है वो इतनी तो सेट मैक्स पर नहीं लगती, लेकिन सूर्यवंशम ये फिल्म है क्यों लगती है। ये सवाल एक बहुत बड़ा है, जैसे बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, वैसा ही एक सवाल है। चलिए फिर इसका जवाब ना तो मुझे आज मिला, वो क्या जवाब था वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन कुछ ही देर में। सूर्यवंशम इस फिल्म से अगला गाना एंजॉय कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड विद आरजे अदनान और एमजीएम 90.8 एफएम।

0: What's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होमियोपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
4: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
3: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
4: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू। ऑल्सो डायरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर। अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
3: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस। गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा।
5: For admission, contact 9371714265 or visit www.mgmu.ac.in.
6: बाय वन गेट वन फ्री, होय होय खर, एक घ्या आणि एक फ्री मिळवा। स्वातंत्र्य दिनाच्या खास निमित्ताने द्वारकादास श्यामकुमार घेऊन आले आहे शानदार ऑफर।
5: बनारसी सेटिन साडी, प्रिंटेड डोला साडी, डिझायनर साडी, जामदानी सिल्क किमया कॉटन किंवा लेडीज ड्रेस, तुमची फेवरेट साडी बाय वन गेट वन फ्री,
6: म्हणजे स्टाईल ही डबल आणि शॉपिंग चा आनंद ही डबल। स्वातंत्र्य दिन साजरा करा नव्या शॉपिंग सोबत।
5: द्वारकादास श्यामकुमार, स्वातंत्र्याचा अभिमान, नात्यांचा सन्मान, शानदार ऑफर सोबत।
7: ही ऑफर फक्त 9 ते 17 ऑगस्ट 2026 पर्यंत। पत्ता, द्वारकादास श्यामकुमार, सिडको 9209099991, बीड बायपास रोड 9503109429, त्रिमूर्ती चौक 9699703562 आणि चिकलठाणा 9765822991।

फिल्मी फ्राइडे में आरजे अदनान आपके साथ है ऑन एमटीएम 90.8 एफएम। और आज हम फिल्मी फ्राइडे के अंदर सूर्यवंशम इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। और एक सवाल ना तो हम सभी के जहन में आता है कि यार सेट मैक्स पर ये फिल्म इतनी बार क्यों दिखाई जाती है, क्या वजह है? क्योंकि दुनिया में तो इतनी सारी फिल्म है जो कि सेट मैक्स बार बार नहीं दिखाता, लेकिन सूर्यवंशम ये फिल्म क्यों दिखाता है? तो इसके पीछे एक बहुत खास वजह है, वो है राइट्स के बारे में। परमानेंट एग्जीबिशन राइट सेट मैक्स ने सूर्यवंशम फिल्म की खरीदी है, यानी कि इसके अंदर 100 साल का ये पूरा राइट होता है। और इस वजह से ना तो 100 साल तक सेट मैक्स को ये फिल्म बार बार दिखानी ही पड़ेगी, और इसके पूरे के पूरे राइट्स सेट मैक्स के पास ही है। 1999 में फिल्म रिलीज हुई थी, तब से लेकर आज 2024 तक और आने वाले बहुत सालों तक ना तो सेट मैक्स पर आपको सूर्यवंशम ये फिल्म हमेशा दिखती नजर आएगी। तो ये एक उसके पीछे रीजन है राइट्स का। जैसे कि एक और फिल्म थी बॉलीवुड में तुझे मेरी कसम, उसके भी राइट्स ना तो किसी को बेची नहीं गई थी, सोचा वो फिल्म आज तक कभी भी टीवी पर आई नहीं, बस थिएटर में आई थी। सूर्यवंशम फिल्म ना तो हम सभी के जहन में इतने फिट तरीके से बैठने का जो एक क्रेडिट जाता है ना, वो सेट मैक्स को भी जाता है। जब कभी आप सेट मैक्स ओपन करोगे, कभी ना कभी आपको सूर्यवंशम ये फिल्म देखने को मिलेगी ही। वैसे आपको पता है क्या कि सूर्यवंशम फिल्म के लिए ना

वेलकम ऑन MGM 90.8 FM फिल्मी फ्राइडे में आरजी अदनान आपके साथ है। और आज हम बात कर रहे हैं फिल्मी फ्राइडे में सूर्यवंशम इस फिल्म के बारे में। और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि सूर्यवंशम इस फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन पहली चॉइस नहीं थे। अमिताभ बच्चन के पहले भी ना तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे EV सत्यनारायणा, इन्होंने ना तो बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स को इस फिल्म के बारे में पूछा था, मतलब आधे बॉलीवुड को तो उन्होंने पूछा ही था, जिसके अंदर गोविंदा, मिथुन दा, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, इन सभी को पूछा गया था। बट हर किसी ने ना तो एक अलग अलग रीजन देने के बाद इस फिल्म को मना किया था। तो फाइनली अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के अंदर चूज किया गया और अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के अंदर जो एक्टिंग की वो लाजवाब है, काबिले तारीफ है। मुझे लगता है कि अमिताभ बच्चन जी के सिवा ना तो कोई और इस फिल्म के अंदर हीरा ठाकुर का वो कैरेक्टर था ना, इतने खूबसूरत तरीके से और इतने बेहतरीन तरीके से कभी निभा ही नहीं सकता। वैसे इस फिल्म के डायरेक्टर और इस फिल्म में जो एक्ट्रेस थी ना, उन दोनों की ये हिंदी में आखिरी फिल्म थी। कैसे बताऊंगा आपको कुछ ही देर में। RJ अदनान के साथ सुनते रहे फिल्मी फ्राइडे ऑन MGM 90.8 FM।

सूर्यवंशम फिल्म के बारे में आज हम बात कर रहे हैं आरजे अदनान आपके साथ हैं ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। फिल्म फ्राइडे में सूर्यवंशम की बात हो रही है। तो देखो यार, सूर्यवंशम में जो फिल्म थी ना, ये साउथ इंडियन फिल्म थी, को फिर बाद में हिंदी में बनाया गया था, जिसके अंदर फिर अमिताभ बच्चन थे। और आपको पता है कि इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे ना, तो इनकी पहली और आखिरी फिल्म थी हिंदी में बनाए वाली उन्होंने सूर्यवंशम ही थी। ईवी सत्यनारायणम ये उनका नाम था डायरेक्टर साहब का। और इसके अंदर जो हीरा ठाकुर की वाइफ का किरदार जिन्होंने निभाया था, जिनका नाम था राधा हीरा सिंह फिल्म के अंदर, और एक्ट्रेस का नाम है सौंदर्या। इनके बिना तो ये पहली और आखिरी हिंदी फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने कभी हिंदी फिल्मों में काम किया ही नहीं। फिर उन्होंने मलयालम, तमिल इन फिल्मों के अंदर काम किया था। तो डायरेक्टर की और इस एक्ट्रेस की ना, तो दोनों की ये पहली और आखिरी फिल्म थी। इसी के साथ इस फिल्म के अंदर आप देखोगे ना, तो बहुत बड़ी स्टार कास्ट थी, जैसे कि अमिताभ बच्चन तो थे, इसके बाद सौंदर्या, जयसुधा, मुकेश ऋषि, अनुपम खेर, कादर खान, शिवाजी सत्यम, बिंदु देसाई, रचना बैनर्जी, राजेश खट्टर, इतने सभी कैरेक्टर ना तो इस फिल्म के अंदर आपको दिखाई दिए थे। तो ऐसी एक कुछ बेहतरीन सी फिल्म है। सो कुछ कुछ फिल्में ना तो यादगार तरीके से हमारे जहन में होती है और अमर हो जाती है। तो ऐसी ये फिल्म है सूर्यवंशम, आने वाले वक्त में भी आपको टीवी पर बहुत बार दिखाई देगी, देखिएगा ज़रूर। और अगले फिल्मी फ्राइडे में हम किस फिल्म के बारे में बात करें या फिर किस एक्टर के बारे में बात करें, तो आपकी भी सजेशन हम तक ज़रूर पहुँचाइए। DM करें RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर। और बाकी तो सुनते रहे MGM 90.8 FM।

हर शहर की ना तो अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान होती है, और उस पहचान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान होता है उसकी धरोहर का। हमारा अपना शहर छत्रपति संभाजीनगर, जिसे हम प्यार से सिटी ऑफ गेट्स भी कहते हैं, याद तो है ना आपको। और ये दरवाजे सिर्फ पत्थरों से और लकड़ियों से नहीं बने, बल्कि इनमें छुपी है हमारे शहर की सदियों पुरानी कहानी, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान। यू नो व्हाट, भड़कल गेट हो, दिल्ली गेट हो, रोशन गेट हो, या फिर कोई भी ऐतिहासिक धरोहर, ये सिर्फ देखने की जगह नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी गई हुई विरासत है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी धरोहर को जाने, उनकी अहमियत समझे और दूसरों तक वो कहानियां पहुंचाए, क्योंकि जब हम अपनी विरासत को संभालते हैं तभी हमारी पहचान आने वाले कल तक कायम रहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी है मेरी माटी मेरी धरोहर अभियान, मेरे शहर की पहचान मेरी जिम्मेदारी है। तो अपने शहर की जो धरोहर है, जो अपने यहाँ पर ऐतिहासिक किले है, गेट्स है, और भी जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो उनको संभालना, उनको मेंटेन करना और उनकी साफ सफाई रखना, ये जिम्मेदारी हम सबकी है, बस प्रशासन की नहीं, मीडिया और आपकी भी है। तो ये बात का भी ख्याल रखिए, क्योंकि यही तो इतिहास है जो हम आने वाले जनरेशन तक पहुंचाने वाले हैं। तो आइए फिर अपने धरोहर को सिर्फ देखे नहीं, उसे जाने समझे और संभाल कर रखे। तो वादा कीजिएगा कि अपनी धरोहर संभालने के लिए आप भी मदद करेंगे, क्योंकि मेरा गाँव मेरी धरोहर। स्टे ट्यून्ड। All is well with RJ Adnan.

0: बाज बने।
1: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: MGM 90.8 FM सुने, बातें हो दिल से दिल तक, अब दूरी कोई न रहे।
2: ये
0: अपना रेडियो, अपनी बातें, गीत, खबरें, जिंदगी के जज्बात। MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।